मेरा रूप बिगड़िया होया भयानक है। मुबारक है जो बंदे नूं अपने आप कोलों डर लगन लग पवे ना, ओ समा मनुख दे बदल जाण वास्ते बड़ा मुबारक है। मनुख दे चंगे बनन दे दिन आए समय, जिस दिन बंदे नूं अपने अंदर फैले हुए औगण नजर आ जाण। धन गुरु नानक ने उन्हां औगणां ते सट नजर पवाई, कहिंदे मैं वेखदा, भाव धन गुरु नानक दे इस शब्द द्वारा असी वेखना है अपने अंदर, ते देखना है सारा कुछ, बहुत कुछ नजर आ जाएगा। जे सारा कुछ नहीं ते बहुता कुछ नजर आ जाएगा। एक स्वान दो स्वानी नाल, एक ता मेरे अंदर कुत्ता भौंक रहा है, उदे नाल दो कुत्तियां भौंक रही हैं, लोभ कुत्ता, आशा ते तृष्णा उदे नाल रलियां हुई कुत्तियां। हर अमृत वेले हर दिन चढ़ते पलक पलक लफ्ज जेड़ा है, एदा अगर आप बिल्कुल सही लफ्ज अर्थ वास्ते लभिए, अंग्रेजी चापा तू मारो कह सकने। अगला चढ़दा दिन, हर अमृत वेला हर चढ़दा दिन, जिस वेले मैं भगती ने मार्ग ते तुरना चाहना, मेरे राह विच भौंक भौंक के मैनू ए परेशान कर दे, लोभ तृष्णा ते आशा, इन्हां दे भौंकण दे नाल मेरे अंदर हलचल पैदा हो जाती, बल्कि भौंकै सदा बयाल, बड़िया भयानक आवाजा कढ़ दे, कूड़ छुरा मुठा मुरदार। पुराने समयां च कुछ लोग जंगली कबीलियां चो ऐसे भी हुंदे सन, जेड़े ना ता लिबास चंगा रखदे सन, ना उन्हां दे खान पहनन पीण दी मर्यादा सी कोई, ना उन्हां दे डेरियां ते कोई समाजिक मर्यादा ही सी। जो मिल गया मार लिया खा लिया, जिन्हू वेखिया लुट लिया। आम तौर ते साडे लोग सासियां नूं भी ऐसा करके जानदे रहे ने, हालांकि सासी कौम कुछ होर सी। ए राजपूतां दे ओह लोग सन जेड़े साहस करके हिम्मत करके बागी हो तुरे सन, पर क्योंकि थां थां फिरदियां होया, इन्हां लोकां ने भी चज नाल कोई टिकाणा ना बनाया, इन्हां दी मर्यादा भी खाण पीण पहनण दी कोई चंगी ना रही, ते आम तौर ते समाज विच इन्हां नूं भी उसे निगाह नाल वेख्या जाण लग पिया। जिहड़े असभ्य लोग सभ्यता रहित सभ्यताहीन लोग साडे समाज च पसरे होए सन, जिहड़े किसे समाज नूं किसे इंसानियत दे कानून नूं मनण नूं तैयार नहीं, गलत खाण पीण गलत काम करन वाले, ते फिर लोकां नूं लुट्टण मारन जो कुछ मिल जाए आम तौर ते बिले न्योले जो कुछ मिल गया सब खा लेंदे सन। हुण ओह छुरा भी रखदे सन, तीर भी रखदे सन, हथियार रखदे सन,

कहे प्रभ अवर किछ की जय। सब बाद सिगार फोकर फोक कैया कियो सिंगार मिल।

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रसना बांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जां भैणां नू ताल सुर दी समझ ना होए ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिहदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणां जां वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज नाल बोलन ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिलना है।

देव कीती संतोखी जिन सच्चो सच त्याया उन्हें मंदे पैर न रखे हो कर सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अनपाणी थोड़ा खाया।

त्रिदर जत का जुर अगर थवाओ दोपहर तपे का सत अगर थवाओ कलयुग रथ अग्न का कूड़ अगर थवाओ शाम

जित मुखदा सलाहिए पागरती चार नानक तिम कुजले ते सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिसना ही

0: हर सर तीर जे नावे पुत्र नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुजरे ते भले संसार किरण्यो लगा रव से देखने विचार।
1: रंग हसे रंग रोवे।

की न्याई शोभ नहीं बिन परतारे बिनो सुनियो जब ठाकर मेरे बेग आयो कृपा धारे कहो नानक मेरो

0: जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ। बाबा जी असि भी इन्हों के दर्शन करन आया किथे मिलेंगे?
0: सचखंड विखे।
1: सचखंड?
0: हां बेटी गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जाग राजे ने ता फिर सड पागा च उन्हों के दर्शन नहीं। निराश न हो बेटे उन्हों का रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख सर की सेवा करा रहे ने।
1: तुंग पिंड?
0: हां तन गुरु अमरदास तन गुरु रामदास
1: तन गुरु अमरदास
0: तन गुरु रामदास।
1: किन्नी सोनी था है। तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंडो जाके कुछ खान में लानी हूं नाले पता कर लें कि तुम पिंड किन्नी दूर है। अच्छा
0: छेती आना। तन गुरु रामदास।

0: Tanrım Amadas. Tanrım Amadas. Tanrım Amadas. Ben iyi oldum. Benim ruh tutta gel. Ben çalpır sakda. Tanrı Ajin. Bu tere sudur da kalır. Jira Ajin benim nöye jivin bile. Rajini, Rajini, ben iyi oldum. ''Mein çal pır sakde Rajini, mera rol tutta gaya Rajini, ben ٹھیک ho gaya.''
1: ''Kon ho tusi?''
0: ''Mein kon hai?'' ''Tusi mein pashanda nahi Rajini ji?''
1: ''Mein kehna mere pati, jinna ne mere se chhutke gayi se kise ne, kise ne mere pati?''
0: ''Mein thoda pati hai Rajini ji, thoda pingla, tusi mein chimpur ne laage, tusi mein sanji de darshan karaye, tusi mein bolwar laage, tusi mein chhubir wale babbe to paani pe aaye.'' मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला और अजीब जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: ऐ तो ठीक है, पर क्या डर रोग के लिए ठीक होया?
0: ये सारी करामात ऐसे चलती है। थोड़े जान तो बोला, मेरे कन्नत फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रेड़ता रेड़ता, ऐ छपड़ी तो कंडे ते आ गया, और पानी न फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पे सन।
1: तुसी कहने में फिर के पानी कैसे ना तेरे हाथ में
0: ऐसा ना।
1: अच्छा, तब तुम ऐसा तो वो पानी पाओ, मैं अपनी अखाना लिस्ट जल्दा चमत्कार लिखाऊंगी।

0: हे परमात्मा, तुम्हारे पुकार सुन ले, माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मभारी। धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख शक्तवार जमदूत एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू ला। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे। बंदे नाल बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाता जिथे मोह बनिया होवे प्यो पुत्र विछड़ जान भरा भरा विछड़ जान मां पुत्र विछड़ जान मावां धीआं विछड़ जान दुख वापरदा मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे कहिंदे ने वालू नाल विछड़िया बंदा किन्ना दुखी दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक नित दी भुख राती सुते खा के दिने फेर खली हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख की गल जिहड़ी रोटी की लगती एक होर भुख की गल बाबा जी कहिंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आप मिटण विच ही नहीं आउंदी सब कुछ हुंदिया सुनिया भुख कायम है खा पी के भुख कायम है उस भुख ने बहुता दुखी कीता रोटी की भुख बंदे ने जर ली होवेगी लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी हो एक दुख शक्तवार जमदूत एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा लेखा किवें देवांगे सुरखरू किवें होवांगे चौथी थां ते महाराज कहंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए आ कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जांदा तू किथे किथे दवाई लावेगा किस किस दुख दा दारू करेगा पर जदों गुरु दी रहमत हो जावे ना सारे ही दुख दूर हो जांदे दुख बिन से पूर्ण पई खाल कदों जदों गुरु की बख्शिश हो जावे रहमत हो जावे सतगुरु दयाल हो जान ए गल वखरी है सात संगत इस तो कुछ साहबा ने कहा ना गुर पूरे जब भय दयाल ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी सतगुरु सदा दयाल है भाई गल एनी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं मैं निम्रता नाल उहदे चरणा ते मत्था टेकिया कि नहीं मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई मत्था टेकिया है रहमत अवश्य होई और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए इन्हां नूं दुख किया है ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है दो कहिंदे ने दोष नूं गुनाह करिए ते दुख पले पैंदा ते पावन बाणी च तोका हुंदी है ना मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश इन्हां नूं एक एक दोष है मृग नूं कन्नां दा दोष है सुनन दा कुत्ता शौक है इस नूं कंडे हिड़े दी आवाज च फस के मारिया ते फड़िया जांदा है मच्छी नूं जीभा दे स्वाद दा रोग है दोष है जीभा सादी लीलत लोह स्वाद दी मारी होई बाहरों आया गडोआ या बाहरों आया जो कुछ भी मसाला लगा है कुंडी दे नाल उन्हूं निकल लैंदी है कुंडी निकल लैंदी है फस जांदी है परेंग नूं पंवरे नूं सुगंधी दी तीबर इच्छा ने रोगी बना रखे पतंगे नूं नेत्रां दी भुख ने अखां दी भुख ने रोशनी वेख के बावरा हो जांदा है हाथी नूं काम दा रोग है मगर महाराज तां कहिंदे ने बंदे दा की हाल होवेगा पंच दोख असाध जामे तां की केत कास बंदे नूं तां पंजे ही चमड़े ने इह कन्नां तों वी कमला इह नासां तों वी कमला अखां तों वी कमला जीभां तों वी कमला इंद्रियां सारियां तों कमला काम तों वी कमला इहदा की हाल होवेगा सतगुरु जिस दिन कृपा करदे ने ना उस दिन इन्हां दोषां तों बचाउंदे ने बंदा जिस दिन दोख तों बच जांदा है दोष तों बच जांदा है उस दिन दुख तों वी बच जांदा है क्योंकि दोष तों ही दोख तों ही दुख पैदा हुंदा है दोष नहीं रहा दोख नहीं रहा ते दुख भी नहीं रहेगा गुर पूरे जब पहे दयाल।

कि नहीं किया परवृत पसारा, कि नहीं किया पूजा विस्थारा, किवन कि नहीं निवल भुयंगम साधे, मोहे दीन हर हर आराधे।

ओ वाहिगुरु, ओ परमात्मा ते इतना शक्तिशाली है कि सारे संसार ते ओदा हुक्म चल रहा है। जदों ओदा हुक्म आ गया मैं उठ के तुर पैना, जिन्ना चिर संजोग है उन्ना चिर मैं तेरे नाल हां। हुक्म आया ते तुरना पैना है, रोज ही ए गल लै के बह जांदी है, रोज ही पुछदी है। पर जेड़ियां ए सच्चियां गल्लां इहदा पति इहनू दसदा है, उन्हां नू ए मखौल करके समझ

राजे ने सोचा मैनू नमस्कार करेगा, पर जदों ऋषि ने ना नमस्कार की क्योंकि उते समाधि विच बैठे हुए सन, गुस्सा आ गया। कहन लगे मेरे राज विच एक ए फकीर, मैनू इन्हे उठ के नमस्कार नहीं की, इनू मैं इस गल का मजा चखावांगा। कहंदे ने एक मोया होया सप पिया सी, अपने धनुष नाल चुकिया ते ओ मोया होया सप उस ऋषि दी गलदे आले दुआले लपेट दिता, उसी गर्दन विच पा दिता कि जदों इहदियां अखां खुलण गियां डरेगा। वापस आ गया अपने राजमहल विच। उधर ऋषि दे पुत्र नूं जदों इस गल दा पता लगा कि राजा ने तेरे प्यो नाल मजाक कीती है, आया उन्हें आके अपने प्यो दे गल विच्चों ओ सप लाया, नाल ही उन्हें श्राप दिता कि राजे नूं इतना माण अहंकार हो गया, अज तो सतवें दिन राजा सप दे डंगण नाल ही मरेगा, श्राप हो गया। इधर जदों राजमहल दे विच राजा आया, मुकुट ला के रखिया, एकदम बुद्धि फिर स्वच्छ निर्मल होई, पश्चाताप कीता कि ऐ राजन तू ते अज बहुत ही घोर पाप कर बैठे हैं, पर हुण की बनदा है। अखीर ए भी गल पता लगी कि सप दे डंगण नाल तेरी मृत्यु होनी है। कहंदे ने साधु दा बचन कदे खाली नहीं जांदा। इन्हें अपने राज पुरोहित सदे, बड़े बड़े ऋषि तपीश्वर सदे कि किवें इस मौत तो बचिया जाए, सप ना आवे। किसे ने कुछ दसिया, किसे ने कुछ दसिया, अखीर कुछ मंत्रियां दी सलाह हुई कि सप नहीं आएगा, जे सप ना आया ते मौत नहीं हो सकती, पानी दे विच घर बनाया जावे, क्योंकि जहरीला नाग जेड़ा है पानी दे विच नहीं जांदा, ते जे किधरे पानी चलिया भी जाए तां शीशे दे उत्ते सप नहीं तुर सकदा, इस करके शीशे दा एक महल बनाया जावे। राजा शीश महल दे विच बैठे, जदों ओ समा लंघ जाएगा राजा बच जाएगा, इहदी मौत नहीं होवेगी। इसे तरह कीता गया, दरिया दे विच शीशे दा एक घर बनाया गया, राजा उहदे विच बैठिया अपना सिंघासन ला के। निर्धारित समय ते जदों ओ समा पुज्जा आके चारे पासे पहरेदार लगा दिते, कोई भी परिंदा तक एथे ना आ सके। लेकिन की होया, रोज जेड़ी मालन आउंदी सी फुल्लां दा हार लेके, गुलदस्ता लेके राजे नूं भेट करन वास्ते, उहनूं पता लगा ते इसे पासे आ गई। पहरेदारां ने सोचिया इह स्वागत विच लियाई है, रोज ही लियाउंदी है फुल ते गुलदस्ते, उहनूं जाण दित्ता। ए मालन जदों राजे दे कदमां विच इहने जाके फुल्लां दा गुलदस्ता भेट कीता, गल विच पाया ओ फुल्लां दा हार, बड़ी बेहतरीन खुशबू इस नूं आई। फुल्लां दा जिहड़ा गुलदस्ता सी हथ विच लै लिया, इसने कहण लगा मालन अज ते इहदे विच तूं बहुत ही खूबसूरत फुल गुंद के लियाई है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਿਛਕ ਨਾਗ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਡੰਗ ਉਸਨੇ। ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

जे हुकम आ गया उस पार ब्रह्म परमेश्वर दा, उसनु कोई मेट नहीं सकदा। तो शेख फरीद जी, असा माया मोह दे जंजाल विच फसे हुए मनुखा नु एक जीवन दी सच्ची गल दसदे ने कि ए जीवन नाशवंत है, जे कुछ सच्चा है तां वाहिगुरु दा परम पवित्र नाम है, और सच्चे अमल चंगे अमल कीते हुए ही दरगाह दे विच कम आउणगे। कहंदे ने फरीद जी,

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां। वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वड़ियाई है, बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितरे नहीं मिलदा। साडे सारिया दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जदों कदे ऐसा महसूस होवेगा कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लेना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता है, उदो रोमा विचो अमृत चढ़ता है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों स्वासा विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुनदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां ना साहिबंच, कहिंदे ने नाम जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल दी गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा ता हो गया, सदा ही कीर्तन हुंदा रहे, ये किवें हो सकता? वो एक अवस्था है। कोई उसनू अनहद नाद दी गल करता है, कोई उसनू इलाही नाद दी गल कह के करता है, कोई किसे ढंग नाल दसदा है। लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद दी अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजदा है। हर वक्त दी आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते ना ना होवे कि जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इह वी बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा ते वगार जापदा, बोझ जापदा। ते शुरू शुरू विच सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं एक बेनती करा, बच्चे नूं स्कूल तोरने आ पहला आड़ी भी करदा है। कोई विरले बच्चे हुंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरे बच्चियां वल वेख के इहनां दा लिबास बड़ा वधिया है, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कईआं बच्चियां दे अंदर इह शौक पैदा करता जांदा है। पढ़ेगा बहुत वड्डा अफसर बनेगा, बड़ियां तरक्कियां करेगा, ओह चा लै के तुरदा है। नहीं तां आम तौर ते बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लग्गिआ बहुते तां रोंदे वी वेखेगा, ओनू एक बारी धक्के नाल स्कूल पहुंचाउणा पैंदा, उत्थे जाके बहिंदा, एक तां जकड़ के बहना बड़ा होंदा, एक जो कुछ पढ़ाउंदे ने उहदी समझ तों बाहर आउंदा, उह पहला पहला बड़े परेशान होंदा, पहला पहला उसनू कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अक्षर हन उह बोझ जापदे ने। लेकिन चार दिनां बाद उह जिहड़ा बोझ है उह ज्ञान दा बोध दा एक सोमा बन जांदा है, फिर उही अक्षर मौज बन जांदे, उहनां अक्षरां बिना नींद नहीं आउंदी। जद तक कुछ पढ़ना लवे उहदी मन की शांति नहीं बनती, यह संसारी पद्धत की गल। धर्म के मार्ग से भी ऐसा है, शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापदा, नितनेम भी बोझ जापदा, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापदी। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जेडे कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने ना, कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जि अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाए, वासियां मारते ने, पासे मारते ने, किहड़े वेले भोग पवे जान छुट्टे, फसे जापदे। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह वो बेनती की है, स्कूल जाण वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, ओह वरिया बद्दी 15-15-20 वरे बोझ ही धोंदे ने, पढ़दे भी किताबां नाल मत्था मारदे भी, रोंदे दुखी होंदे, कई वारी ओह फेल हो जांदे ते धू धू के अपने आप नूं शर्मो कशर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं होंदा, शौक नाल नहीं पढ़दे, ते फिर उहनां दे माता पिता उहनां दा आला दुआला कहिंदे पढ़दा तां हैगा, पढ़दा कदा विगार कटदा, तू कसीट के तुरिया आउंदा, वैसे पढ़न वाली गल कोई। बिल्कुल इसे तरह साडी गल,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਫਲਣਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭਾ ਤੇ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਖਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਚੀਤ

बादशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण छिलो मार्ग गोविंद एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउणे ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पीवो ए रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहेगुरु निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला कर रै जियो नैनो पेख ठाकुर कारण जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है ता एक पिता एक सके हम बारक साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बारक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

काल खाए किछत होंदे, काल खाए किछत होंदे, नानक पछाणे से गुरसिखी दी ए निशानी। हां तिसू विचों आ रिया, हां तिसू विचों आ रिया, मान होंदे होई नी माणा, हां तिसू विचों आ रिया, हां तिसू विचों आ रिया, तां होंदे होई नी पाणा, ਹੱਥ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪ ਹੋਏ ਆਣਾ ਹੱਥ ਫਿਰ।

ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है मैं ते अवगुणा दा परया तकना के परमात्मा रूप

को धनवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

काती अकिरत कन में कोई ना रखन, विश्वास काती अकिरत कन, विश्वास काती किसनु कहंदे ने, जेड़ा किसे नु प्यार विच लिया के

सतगुरु दा उपदेश है, हरि दे नाम दा सिमरन करना ते हरि दे नाम नू अपने हिरदे विच दृढ़ करना। उठ दे, बैठ दे, सौं दे, जाग दे, अठे पहर प्रभु दी याद दे विच मगन रहना। ए हरि दा नाम ही है जो गुरसिख नू लोक ते परलोक विच सहाई हुंदा है अते मन बांछत फल दिंदा है। साहिब फरमाउंदे हन, सुन उपदेश हिरदय बसावै, मन इच्छे नानक फल पावे। सतगुरु जी दा उपदेश सिख नू समझांदा रहिंदा है कि सदा प्रभु दी शरण विच रहो, क्योंकि प्रभु दी शरण तो बिना होर किसे दी भी शरण बिरथी है। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एकै भगवान, जिसके दिए रह अघाए, बहुड़ न तृष्णा लागे आए। सदा ते संग चलन वाला साथी सिर्फ प्रभु दा नाम ही है। साहिब बाणी द्वारा गुरु तेग बहादुर पातशाह समझांदे हन, हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो। गुरुदेव कहंदे हन कि समा बीतदा जा रहा है, मेरा कहा मन ते हरी जस करके अपना जीवन सफला कर लै। अवसर बीतो जात है, कहो मान लै मेरे।